Τζούζα, αλλά πάνε πάλι, μπασάει αγιαζό, είναι πάλι, γίνεται σου να δείπει, σα κολλάσει τα δούνου γαλαντσέλα, σα κουσά, γιαζό σα γύρω σμίλα, αλλά γιαζό να παντού, τι είναι να σου να δειλά, αλλά πρώτη μάγκαλ βάβοι, γιαζό είναι πάλι, πέτα ίνισε, μια τάι τόκο. Το Νεπάλ σαμπατ εγάρα σου τσαϊάλη, γουλάγα δουά δε σίζουλα, αλλά το μπαδρό τη σκοτή, γέντζι αντολον. Jugu, Tachidata, Alisargara, Tonga Diniata, Genji Said Divastaga Goshnaya Seto, Sarzanik Vidana Bibuzula, Tonga Tebiso Fezio Therapy Divas, Ali Antarastria, Sakcherata Divasna, Genji Said Divase Barisu Kate, Doksha Shuga Koka, Madra Teskate, Genji Andolanjula, the May Santa Purbok, Jugu Andolane, Kuspex, Viaza Hingsatma, Rukala, Ali Yokusha Tabu, Gian Nobly, Monkey Mala Razi Boxenzai, Guli. ले चलेना युगको युवा थिए बुझ्यानु होला अहिले उही फलस्वरूप हान 24 गते देशभरि तोडफोड नजुल सिंहदरबार निसेकया देश एकदम प्रमुख प्रमुख ठाउँमा अदालत राष्ट्रपति भवन निसेकया नेता तेगु थगु व्यक्तिगत ठा ब्यातकन मलेन अहिले सरकार 2082 मङ्सिर 15 गते चुङ्गु मन्त्री परिषदीय बैठक Genji said Divastaga, Honeygood, Akaze, Gosna Yagosla, Bolakaze to Flangu, Zuloto, near day, Flangra Rabble, Ayagos, Sarkar, we knew Yagosulam, Classusila, Karki, Pradan, Tijuble, to Gosna Yantogosla. Yes, I told Dacia Duni, Gully, Genji Tesso Togu, he blessed Punkalam, Latogu, Gian, he Punkala, Olyakon, DC. परिवर्तन जुग दुलाकी मधुले वन त्यसा मूल्याङ्कन यागु दिन थमे थिएछ यो कोइको मनु ते ज्यान वन अलि बयासिबे अपो मनु त घाइते जुल व घाइते जु पिनगु आयागो अवस्था चाहिँ तस्को हे मछिङगु अवस्था दु यो कोइ मला घुमा घुमा आतकन उपसारिया माल जुगु दु तर सरकार छुए ग्वाली मया थैगु खन्दन जिसा इलेभेले जना होइसना यसा थो दिया त आछगु नगु दि कथा चाहिँ जेनजी शहीद दिवस तका चाहिँ हनेगु घोषणा जुल वे कथा थौ सार्वजनिक बिदा जुल अलि जेनजी ते गुहे आन्दोलन याना देशे चाहिँ तरहगु यो पावल सत्ता परिवर्तन जुल रासोपा बहुमत हया सरकार देका चाहिँ चुन्छ न तर ओ सरकार हो चाहिँ जेनजी त लगायत नेपाल दक्क नागरिक पिन त जिपि चाहिँ ज्याया त वइपि तका चाहिँ अनुभूति बीके फयाचोने के मफयाचोनले वन मूल्याङ्कन यागु यी थिए जितवा चाहिँ ता ज्याजो सदकले नापाङ्गु मेते तेना ज्याजो नेपाली छिन्दिन सुभा दिला

आग्रो लसको से जाजो नेपाले से नेपाले जाजो नापो द गुड लाइफ बिस्किट्स अलेछि नेचुरल दिल रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रिय छु थगरी दिस स्टेशन जाजो साजी बुख बाखे हुने थौ यागु दकले नापांगो बुख नेपाल भाषा सेनामी पिन्त हन थागो बुख जुल नेपाल भाषा सेनामी दबुया गुसाले ये महानगरपालिका 22 वडाया गुहाली ये या निवास सांस्कृतिक छे फुला भन्साले आइदबा नेपाल भाषा प्रश्न सहायक पिन्त हंगुदु मो पहा ये महानगरपालिका शिक्षा व स्वास्थ्य समिति संयोजक चिनिगान जी महर्जन कसा गनिएका हनापौ ललहागुदु कसा गानिएका हनापौ ललहागु ख रितेश मल्ल या अध्यक्षता राजेन्द्र महर्जन यहाँको गुज्याजोले खुइद पुलकी अनिवार्य अवकाश बिमाको नेपाल सरकारी नियम कथ थिथि बोने कुथिया च्यामा नेपाल भाषा सेनामिपी राधेश्याम महर्जन प्रमिला तुलाधर कृष्ण प्यारी श्रेष्ठ हसना मैया बज्राचार्य रमा साक्य भावना वैद्य रीता अमात्य व तारा श्रेष्ठ पिन्त अवकाश जीवन सुख हने फेमा धगा भिन्तुरा नाप हनेजा यागु ख नापा नेपाल भाषा कविता जगत चोलकिन सर्वस्वहरण जीवो इतिहास रुमङ्कुसे आन झिपी संक्रमण काले दुदासे मुपहा महर्जन नेपाल भाषा सेनेगु धाइगु केवल जागिर जक मखुसे भाया सेवा न याना छुनागु ख धाइगु मन निसे ताकि त नेपाल भाषा प्रशिक्षण छायक पिन्त इनापेना दिल उगुज्याजोले विशिष्ट पहा ये महानगरपालिका शिक्षा विभाग या नगर शिक्षा विभागीय प्रमुख नमराज ढकाल विशेष पहा ये महानगरपालिका शिक्षा विभागीय शिक्षा अधिकृत केशव गेवाली नेवा सेरामी दबु छ्यान्जे वरुण प्रसाद वैद्य नेवा दे दबुया छ्यान्जे सृजन मान श्रेष्ठ लगायत पिन्स भिन्तुरा नोचु तया दिल ये महानगरपालिका शिक्षा विभागीय शिक्षा अधिकृत केशव गेवाली सामाजिक सुरक्षा कोष व कोष उपलब्ध यही सुविधाबारे थ्वाथी के गुनाप नेपाल भाषा सेरामी पिन्त सामाजिक सुरक्षा कोषे आबद्ध जीवको व्यवस्था जुई ढुङ्कु घु खन कना दिल ज्याजोले मु पहा विशिष्ट पहा व विशेष पहा व पहा पिन्त नाय मल्ल लुमन्ती चिन ललहाना दिगु ख चिकपिसा शिवे ख ये महानगरपालिका धप्ले नापा नेपाल भाषा स्थानीय विषय या पठन पाठन जुल अले उके लागि सचिव नेच्याम चाहिँ सहायक प्रशिक्षक नेपाल भाषा प्रशिक्षण सहायक जे चाहिँ कुचेक इलाका नवाटल नेपाल भाषा प्रशिक्षण सहायक पि कागु जुल अवे क पि धासा फ्री द दुपि अवकाश जुइगु जुगु दु एजे च्याम चाहिँ अवकाश जुदुल आहन कथा रूपमा खुइ म खुइ दन्दत कि चाहिँ वेक अप पिस तोति माली वेक अप पिन थासे चाहिँ हान नुनु पि अन चाहिँ नेपाल भाषा बुन्के त थिनी अब वेक अप पि सकल गुमेश चाहिँ आ खुइ द यु उमेर ह दिउ ल्याख चाहिँ नेपाल भाषा बुन्के मखन एसान वेक अप पि स्कुले बुन्के मखसा नेपाल भाषा सेवा वेक अप स या नहे चुनि धका चाहिँ बलसानाका अनि यो को वेक अप पिन त अवकाश जीवन या भी तुरान देश है जैसा आग न मेघ मिश्र

नेपालको काखमा लसेको छ ज्याजो नेपाले ज्याजो छिनेर सुना दिल ज्याजो स आज मेघु बुख पाख्यो भने खुसी बाल पीडित पिन्त स्वनिगा बासिया ऐक्यबद्धता रसुवाया भोटी खुसी खुसी बा पाखे प्रभावित पि नाप थपि झ्याले साथ दो गुख स्वनिगा नेपाल बिपी सधागो दु खुसी बाल प्रभावित लिसे थ पिन दुगो सन्देश बिएको थ आइतबार स्वनिगा यापिसँग छगो वृहत ऐक्यबद्धता र्याली नयाँ यहाँ बसन्त पुलिन यहाँगु ऐक्यबद्धता र्याली हनुमान ढोका मख वङ्ग जनबाहा अस कमलाछी जम अजुया रत्न पार्क शान्ति बाटिका या न्होने थिङ्क्या कोच्याको गुख शान्ति बाटिका खुसी बाल मधुपिन्त श्रद्धाञ्जली देसायसे मधुपिनी सुगतिया कामना यासे बौद्ध भिक्षु गुरुजु पिन्स परित्राण पाठ यागु दुर्गति परिशोधनी पाठ यागु राजो पाध्याय पिन्स स्रोत पाथ यागु ज्या जुगुख ऐक्यबद्धता र्याली निपा नेवा निहलुवा मानव अधिकारवादी नेता मल्लके सुन्दर स्वनिगया नेपामी पिनिगु पाखे सगु वक्तव्य बनाइएका दिशे स्वनिगया नागरिक पिन्स थौ शोक चक फोङका चुनागु मखु शोक या त संवेदना संवेदना या त गुहाली गुहाली या त पुनर्स्थापना भकने सुरक्षित नेपाल देखिगु संकल्पे हिलेमागु ख झेतसे स्वनिगया सकल नागरिक पि महाविपद प्रभावित छेज पि नाप दु धैगु ऐक्यबद्धता फोङका चुना दया दिल छमहे जक मनु या दुखे न सक्स्या साथ बिगु मानव धर्म ख नेपामी जुया या मसिका ख दया दिसे वैकल प्रभावित पिनिगु पुनर्स्थापना स्वनिगा बासी पिनेगु साथ दिगु खन दया दिल अति वेकल महाविपद प्रभावित लागा नागरिक या पुनर्स्थापना व पुनर्निर्माण या त दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकता ते त राज्य या इनाप याना चुना दया राज्य या त इनाप याना चुना दया दिसे छेव लजगा या लिधसा मधेका छो पिनेगु पुनर्स्थापना राज्य गम्भीर जिमागु सडक बनेकुथी स्वास्थ्य संस्था खाने पानी विद्युत संचार व मेगु पूर्वाधार या त गुलिफु उली याक्न भिङ्के बागु पुनर्निर्माण ज्या न्याके बले मानव सुरक्षा वातावरणीय संवेदनशीलता व भविष्य या जोखिम विपद जोखिम या त न ध्यान बिमागु ख दया दिल अथे खुसी बाले लाना मधुपिनी सीमा सुयागु ख दैगु मसी धुका छेज या त ससम्मान अन्तिम संस्कार नीति न ल्यागु प्रक्रिया मानवीय पक्ष या त ध्यान बिया सरल सहज अवस्था देखे त न इनाप्याना दिल वैकल थुगु महाविपद या इलेन थगु ज्यान पाना उदार ज्या खटे ज्या चोपी नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल स्थानीय उद्धार कर्मी स्वास्थ्य कर्मी अथे गाडी चालक प्राविधिक स्वयंसेवकले से नागरिक उद्धार कर्मी पि प्रति स्वनिगा बासिते उच्च सम्मान दुगो दया दिसे सकसित दुनुगल सुब्या देसाना दिगु ख ज्याजोले ये महानगरपालिका या कार्यवाहक मेयर सुन्दर डङ्गोल निसे स्वनिगा या थिथि पालिका या जनप्रतिनिधि पि पूर्व मन्त्री पि थिथि खलपुज या प्रतिनिधि पिगु सहभागिता दुगु ख अति हे आ मेघ या बुख बाख्यो भने मेघ चाहिँ झिन सुनुखु दि अन रसुवा जुन भोटे कोसिया बाढी भाद्र दस गते उभएको छु र अहिले झिन सुनु ध्याबले चाहिँ मेघ 22 गते झिन सुनु त सरकार शोक दिवसका घोषणा या त अहिले यो कोहे समूह संस्था श्रद्धाञ्जली पुङ्खे गुज्या विशेषजना चाहिँ दीप प्रज्वलन या न श्रद्धाञ्जली पुङ्खे गुज्या या त नेवा दिए द बुलन नेवा नेपाल भरिए स्वनिगले चाहिँ नेपाल भरिए दे दुबिया गर गर जिल्ला शाखा नगर शाखा वडा शाखा तदु वडा कमिटी तदु अन चाहिँ श्रद्धाञ्जली सभा यहाँको ज्या या त अहिले गनगन या त अन चङ्गोसँग संस्था त नाप मिले ज्या विशेषजना चाहिँ नेवासँग संस्था नाप मिले ज्या ज्या या त के बारे न जी भुख पकाते आधा सजा जो साख्न मेघु सफु मेसुया

dum ka khna la sukusa jazo nepale chinina chona dilo jazo sa ami ho de dabu lagad me go sansta ya go bare jina sa taya we bare detail on news te de dabla bisesena bote kusi kusi ba we ya divangat jubi prati sudanjali de sa guni se kaya jalbayu nyaya na magya go do de dabu ya gona gona samiti te do anana sai miho sani le khuta ile mat chaka dip prajwalan ya se sudanjali de sa अले नेपा यङ्क हे छगु हे शोक वक्तव्य जारी या त छिन सोनु पुण्यतिथि श्रद्धाञ्जलि नाप शोक वक्तव्य रका ओ वक्तव्य सिक्पिन्त जी यना वना निङ्के तेना नेपाल सम्बत 1146 गुलाथो त्रयोदशी बुधबार 2083 साल भाद्र 10 गते भोटे खुसी वगो विनाशकारी खुसी बा नाप प्राकृतिक विपदे लाना ज्यान ओपी नेवा दे दबु नुवाकोट जिल्ला समिति आदा भरी सरिता जोशी दिउछान्जे गीता श्रेष्ठ लवत नाप फुक्क मधुपी प्रति झिन सोनुया पुण्यतिथि स नेवा दे दबु पाखे भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि फुङ्काचना थुगु दुःखद घटना पाखे थ मनु त मधुपी दुःख कपी सकलसित धैर्य धारण या फेमा धका विचार ह्याकुसे घापा जुपिन त याक्न लनिमा धका कामना याचना बेपत्ता जुपिन त तत्काल मालेगु उद्धार यागु प्रभावित परिवार या त मागु राहत व आधारभूत सेवा या व्यवस्था नाप छे मधेका चुने मापिन त याक्न हे पुनर्स्थापन या नीति सम्बन्धित निकाय गम्भीर ध्यानाकर्षण याचना वक्तव्य हान धैत अगोदो जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक विपद या जोखिम अपयावना चुङ्गु सन्दर्भ जलवायु जोखिमे दुगु मुलुक नेपाले तदङ्गु मानवीय नाप भौतिक क्षति जुगुदो जलवायु परिवर्तने नेपाय योगदान नगर्ने जुइक जुइक न थुजोगु कथ या नेपाय त तदङ्गु क्षति जुगु यथार्थ या त अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रभावकारी कथ खल हुना जलवायु न्याय हानि नाप क्षेत्रीय नीति अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र पाखे नेपाल या त दैगु वित्तीय नाप प्राविधिक गुहाली सुनिश्चित या त सरकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरे दृढतापूर्वक सचेतन ध्यानाकर्षण आलोचना नाप भविष्य थुजोगु विपद पाखे जुइगु जनधन या क्षति हो या त प्रभावकारी पूर्व सूचना प्रणाली जोखिमयुक्त बस्ती या व्यवस्थापन खुसी या प्राकृतिक बहाव लगाया संरक्षण नाप विपद पूर्व तयारी व उद्धार संयन्त्र या त अझ अप बालाका यङ्के त राज्य दीर्घकालीन नीति नाप योजना नाले त नेवा दे दबु पाखे इनापेलसुना मधुपी सकलप्रति हाक्न छको भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण यासे दुःख कपी सकल छेज अपिन्त धैर्य धारण यागु शक्ति देमा धका कामना याचना हार्दिक श्रद्धाञ्जली विचाहेका नेपाल सम्बत 1146 गुलागा एकादशी 2083 भाद्र 22 गते सोमबार थो शोक वक्तव्यजुला आगन गन चाहिँ नेवा दिए दबुल ज्याजो झ्याकल लिएर धाइबलाई जिए नाच्न दया पछि गन गन संयन्त्र दु जस्तै बागमती प्रदेश या खल्यागु खसा बागमती प्रदेश 13 जिल्ला डुगुजुल अलि नाप नगर समिति तु ये यल खोपेजुल अलि अथे ये न फरक फरक थासे ये चाहिँ ये महानगरपालिका दुनी छगु चाहिँ महादेव पार्वती डब्ली बसन्तपुर हेजुल साम्यगु बौद्ध पाखेन छुट्टै हेजुल सारा सत्ता पाउ हिसाब अनुचौवरा या त अलि यसले अलि थन ये चाहिँ थनिया गुलिन सङ्घ संस्था तदु अध्यादेखि केन्द्रीय मानन्दर सङ्घ जुल मालाकार समाज जुल ज्यापुमा गुथी जुल अलि मेमेगु सङ्घ संस्था किन अन जोइन्टली जुगु जुल अलि नाप थन चाहिँ फोनिज एउटा पत्रकार आदिवासी तेगु पत्रकार चाहिँ महासङ्घ अलि नाप नेवा पत्रकार दबु न अन ज्याजो स बोतिका गोजुल यलाय खलायौ खसा ज्यापु समाज अलि नेवा दिए दबु मेमेगु सङ्घ संस्था संयुक्त रूपमा यागोजुल यलाय मङ्गल बजारी अलि खोपे धासा निता सुता यागु खन्द त नेवा दिए दबु लसे दत्रा तैले याच्छ मेमेगु सङ्घ संस्थालाई मेठा मेठा या त अति हे गण्डकी अलि कोशी कोशी नदी यो पेठासे मलाई धराने अलि विराटनगरी निसेकया झापतको अलि खोटाङ ताप्लेजुङ डको डको गर्न गर्न चाहिँ दिए दबु या संयन्त्र त अनाउन चाहिँ यहाँको ज्याजुल अथिया मधेस प्रदेश हेर्न विभिन्न थासे यहाँको खबर बोल अलि वयालिपा वया चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश दकुठाए मेरो चाहिँ संयुक्त रूप थो श्रद्धाञ्जली ज्याजो यहाँको जुल खला श्रद्धाञ्जली ज्याजो याना चाहिँ पीडित पिन्दाजी पिन दुही साथीहरूका के निगु ख अलि वनाप नाप छिक्किने जानकारी लागि दे दबुल छुन चुनाउको दु वनाप दे दबुल चाहिँ धेवा मया दौसीको देवा मया
विशेषना नुवाकोट व रसुवा जुन बाढी पीडित पिख बेकपी स्थल ये वया चाहिँ चुना चुना दिएको दुश्मनी गलत उठाएहरू वेकअपी मध्ये न तस्क प्रभावित अर्थ गाधाइबले वेकअपिङके छुए आ मन त मलाई छिए चुइकाइङ्कल आज न छु मरु तस्क थाको पिन्त चाहिँ छगु परिवारे न्यादो न्यादो दा भिगु ज्याज्या छुमधु उके लागि दिएदबुल धेवान मुना छुमधु छिप्पिन न इच्छा दुसा दिएदबुले छि देवा बिहे दिए फु खला दिएदबु यु थो नेपाल यङ्कया जिल्ला समिति नगर समिति पिसन देवा मया मया छुमझु ल र थो देवा चाहिँ झिस आतक या खलायो खस चाहिँ मिगतको खलायो खस निगु बिसवटा परिवार या त झिसमा देवा बिहे दुनाको दुसा ले आथो थौ कने कस कथा कथा चाहिँ बिहा भनेको आ चाहिँ नुवाकोट यु लिस्ट हो सँग डुबची सँगेना कय सुना राखा दाइबले अन नुवाकोटिया वडा अध्यक्ष प्लस अले नुवाकोट जिल्ला नेवादे दुबिया केन्द्रीय सदस्य नदु नरेन्द्र प्रधान वेक पिस छोयागो लिस्ट या त न अझ सर्ट लिस्ट याना अन चिसुली समाज नेवा समाज दगा दुखनी वेक पिनु नापा सुना चाहिँ धक्ले अत्यावश्यक मनु त सुखले दगा अन 36 वडा परिवार सर्ट आउट जोगु दु वेक पिन त धक्ले नापाङो चरने बिगु अल अथे बेत्रावती पाखेन लिस्ट हो गुदु आ रसवाइन लिस्ट हो जोगु दु वक छ चाहिँ तस्क मा पिन त आ छु मको खास न्यादो दा दिउ छु जे खम न तर न अत्यावश्यक जु पिन त चाहिँ छु न छु गुहाली जुइ रका चाहिँ नेवा दिए द बुल नुना सुना गु थो चाहिँ ज्याजु ल अल न पछि स आ गाइते जु पिन त न गुहाली स छु छु कथा याना गु दुसा आज स न विशेषना चाहिँ मा पि मा बो पि छुइ कल तर मस्त न मना छु जु ला छि छिर गबी मस्त दु मस्ते त न क्याम्पे चुन छु गु तर क्याम्पे चाहिँ गाक पोषण युक्त खाना नेगु मधुनी एज आ वो अजापी मस्ते त युको अजापी मस्ते रहे चाहिँ आ दुरु माल त अले मेगुर गादै होला लिटो माल मुला ल माल डाइपर्स माल अजा गुलिन गुवाली या त चाहिँ कलेक्सन यान छौँ दु छिन नेवाजुया वा नेपामी जुया थामलुङला नेवाजको नेपामी जुया गुवाली या मधुसा चिक्पिस नेवा दिए त सम्पर्क दैदिफु

tangu di pa duga no la sukusa jazo Nepal esa Nepal e jazo chenge na sona dilar a dokle li pango bukha pakhe mani yogis bai de alumanti kala vastru jana jazo jubudu Nepal e sangiti khoya sada bahar me halami maduma yogis bai de alumanti kala vastru jana namo wangu sani bacha go sanskritik jazo jula Nepal basa academy go sale sada bahar me halami yogis bai de ya te kogu janma jayanti alasta laka kipuli jongu academy thogwe sabha kakshe arani go sabha hale u jazo jubu kha सदाबार मे हलामी लिसे लेचिनामी बैदेया सांगीतिक योगदान यात लुमंके कथा थुगु ज्याजोरे वेखला हलादिगु लसे हलादिगु झिन नेपु नेवा व नेपाल वासायत मे थिथि कलाकार पिसन हिबया वेक प्रति सांगीतिक श्रद्धा दिसागु ख ज्याजोय दक्ले नापांगु बे मधुम जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ मधुम कवयित्री नारायण देवी श्रेष्ठ मधुम बाखचोमी सरस्वती तुलाधर लिसे भदौ दस गते रसुवा भोटी खुसी खुसी बाले लाना मधुपिन्ता श्रद्धांजलि देसाएको छ छगु मिनेट मौन धारणियाको ख नेपाल भाषा एकाडेमिया चान्सलर मल्लकी सुन्दरिया सभाध्यक्ष ताजुगु ज्याजुले मु पाएको छ किपु नगरपालिका प्रमुख कृष्णमान डुङ्गोल झाया दिगु ख अथे ज्याजुले विशेष पाएको छ वरिष्ठ मेचोमी राजेन्द्र थापा वरिष्ठ मे चोमी बालकृष्ण सजीव वरिष्ठ मे संगीत कमी दीप तुलाधर वरिष्ठ गजल चोमी भूषण प्रसाद श्रेष्ठ लोक कवि राजभाई जकमी ये महानगरपालिका अठार वडाध्यक्ष नुसेकाजी महर्जन झाया दिगु मु पा किपु नगर प्रमुख डङ्गोल पाखे सदाबार मेहलामी वैदया किपा स्वामा कोखाका मतस्याका यहाँको ज्याजोले लोक भापी थिथि कलाकार पिस योगेश पैते हाला दिगु लसेहला दिगु मेनिका दिगु ख साङ्गीतिक प्रस्तुति बिगु झोले नाजापी मेहलामी बिजुजुकाजी रञ्जित दीप तुलाधर कृष्णमान डङ्गोल शेखर प्रधान सत्यनारायण मानन्दर वीर प्रसाद भन्सारी तीर्थमाली गुज्जे मालाकार पवित्र कसा सानुबाबु महर्जन सतीश महर्जन सुलेन्द्र साक्य सुरेन्द्र श्रेष्ठ मथुरा महर्जन जीवित जल्मी रत्न शोभा महर्जन रानी शोभा महर्जन राजेश महर्जन सुबिन श्रेष्ठ मोहन शोभा महर्जन राजेन्द्र डङ्गोल राफेला महर्जन वरिता महर्जन थिथि मे यङ्का दिगु ख ज्याजोले योगेश वैद्य हाला दिगु व लसे हला दिगु ज तुएमा प्रीति गरेर सबमा छ मिखा पर्लक्क च्याका अलिअलि गर्दै घिन्ताङ मे मै पासा कया कोठामा आउँदा जुन जिमी य म थौ बितेका मेरा दिनहरू केवदु स्वादु जस्तो तिमीलाई रहर छ नगु हे छे छनु आदि मे हे बगुजुल साङ्गीतिक ज्याजोले नुच्छे दर्शन तबला सन्जु साई गिटार गुज्जे मालाकार व सुरेन्द्र श्रेष्ठ हार्मोनियमे साथ ब्यादि गुख ज्याजोले पापी पाखे वरिष्ठ मेचोमी थापा थगु नुग खतया दिगु खसा ज्याजोले दक्ले लिपाङ्गु बे एकाडेमिया चान्सलर मल्लकी सुन्दर ज्याजो तालाकेत ग्वालियरा दिपी कलाकार वाद्य वादक व ग्वालियरा दिपिन्त शुभा पौधे सरादिगु खसा योगेश वैद्यका लोकेश वैद्य थ अभियालुमन्ती चोहतगु आत्मवृत्तान्त सफु स्वर्णिम स्मरण ललानिगु ख अले जनामी भाजु मेजुपे मेगुन थिथि यो कोहे ज्याजो त ज्या चोमुदु तर जी चाहिँ विशेष सेना थजागु इले यो को ज्याजो त जीव जी सोले उली ज्याजो जी मागुठे आवश्यकता जी मुख छाएर गर्दा हेर्ने आ देशे महाविपद लान्छु मधु बुदिया ज्याजो उखे ठुखे ज्याजो अझ साङ्गीतिक ज्याजो सांस्कृतिक ज्याजो त ज्याजो मधु अझको ज्याजो लम्बया साँझिउ खमुला ओ ज्याजो धगा धाइगु चाहिँ मुख्यतया विभिन्न स्थानीय निकाय ग्वाली आगु ख बरु स्थानीय निकाय वगु ग्वाली चाहिँ थोए खुसी बाल वो पिनुको नामे तैबु सा जुरे द चाहिँ ताउगा खला वया त बच्चा मसिङ जी मुखला स्थानीय निकायले छु शीर्षकीय बजेट तत्ल वे जाय आ मजी तर एसा आ मया चाहिँ भसली पाया सा जुगु ठेन्या उज्याजु त चाहिँ दिपा

两第三就啦，对不对？就在多少天比赛我那七分钟比赛出个，我嘞那不美国人家对我啊哈诺，有个人好多为你啊啊，就我啊做他为么啦？做他是为你好，第一位吃酸牛，后来第一次你话对我那好么苦？人家就说对着呢，到了多少年过来，我嘞我第一次别好旅游嘞，你话没得那干么子？啊，我嘞到了啊，他家个地势，他家个比什么地势的为重不嘞？就一到没 enough， 我第一次。दौर ने गु दिमाग चाहिए, स्वीटा गुहली आसा तो स्कोहे जो, आ तो स्कोहे जी थो थो ना सब फिरो सोयो वो थो रिल, वो सोया थोड़ी मन खोला दुनी, मिखाए प्यार का जोला, वो गेर का दायु ले अनो तो ठेक ना लो मना सुस्त खुला दो मस्सा मम्मचा व्यतोग दो व्यकोया छे वो व्यकोया निमा भोपी निमा छे पीसे चुई कलां तो क्या पीसे जहाँ पीनी पीनी जोगो जहाँ क्या पीसे मोता तरा भोपी था था गो पसले चुन चुन पीसे व्यकोया पीन तो चुई कलां हनी का बजे में समय से वो चिन खुला दो मम्मचा ये तो जो ना चाहे चुई बिशुने तालाऊनी व्यकोया पी बसे जुलो अले आ समस्या चुरगा दे ले व्यकोया गिला चुई देवा मोर व्यकोया न्यू न्यू गोला पसा दो हनी व्यकोया निका निका छे मगला दो कौन चुई गोला देवाना छो मरो जो बोले वो चिन खुला दो मम्मचा ये तो दूर तो उनके तरह था गुला अन सीबी रे आ दूर सुना बी हो सा बी जुला आ सुना बी मो सला बी मो सरकार जागो छुए व्यवस्था यागो मो दुखनी सरकार छुए जन खा मसी एज प्रधानमंत्री राहत कोसे दिन त एपिसोड थुना बाल के बिजान सही 10 अरस बी अब दिमा मुन नगल तर सरकार अत्यावश्यक मस्ते त दुरु मा मस्ते त सही लिटो मा मला मस्ते त डाइपर मा मस्ते त लो मा सुत्केरी नक्तिने मसा बुपिन त अन नेउ बच्चा वय जाके आलु जक नया मगा त सही बच्चा पोसिलो नेमा त्यस खे तकला इंकी जुनि सा ला इंकी मजु सा मगला खे अंदोक्सन बीफु तर खाली दुनी सरकार चाहिँ छ्यान जो मशोन फील ले जी चाहिँ छिए पूर्वा गुरु त यखलन चलो मोहुच पिसन फील ले यु रिपोर्ट या पिन त सोइ दिस पगला अन चाहिँ गोम मनो वया सिबिरे सोनो न मशो व सिबिरे चाहिँ छुसुर वक दुपि वया सोनो गजा पि वया सोनो छिए लगत सरकार हात क कागु मदु ता एजिया चाहिँ तो तसको हे दा मा विपद ख तर सरकार थगु दगु संयन्त्र परिचालन याना अझ सुना सुना ग्वाली या फुरगा स्वयं सेवक न आह्वान या मा सु सँग संस्था त आह्वान या मा गु ए असल यो को मनो त भोलिन्टियर या थय हुनि नि मुस्किल दुपिस गानो र ग्वा ग्वा आनो सुयत त गमनि मखनि मखला एजा तजाको विपद स्थिति जे सेबले चाहिँ व फासी चाका नखनि क हना चुनि गु मागु मागु नखनि गु व चाहिँ मया सिस तथा खुन न खाली जुन गरे दियो पूजा न हनि गु दुनी सिम्पली रुप पछ ग या स चाहिँ ध चाहिँ जित चाहिँ जुठे छ तर आ समय तया व जुन पुनः संस्कृति के खर गए पिंदै जी यस थुसी नख चख सामान्य रूप हने मा थे चख हने बरु अन खर्च जुइगु नख चख मको बुद्धि मे मे गुन अन खर्च जुइगु थेवा चाहिँ जिस तस्को आवश्यक जुपि मन्दे त ग्वालिया तसे सुबा बिसि छि सकल सीता जाजो जिला दिगुनी सुबा बिसि जिरस मिला थमे लागि बा हकलस क सुबा